0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream Glowing Us, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: वारो वजीर तायरो कैली कतरायल काज अर्गमाल बचाव वारो वजीर बागियों जे गहरे में कड़ाकन बचाव वारे वजीर तायर के अर्गमाल बनाए वरतो बचाव वारो वजीर तायर अकेली अगे मोचन जो दौरो करे वापस वंजी रहे हो तो संदस कानवाए ते हमलो कयो हो होसी बागी बचाव वारे वजीर ईरान से गालियों का इम्कान मौजूद है पर विच मुद्दे वाले चूंड का अग जंग खत्म थे जो को भी इम्कान ना है। ईरान के मामले में एचवी मुआदे का अगते कम किया पो वे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो विच मुद्दे वाले चूंड का तेल की कीमतों में नमाया घटताई जो इम्कान है। प्यूटिन यूक्रेन जंग के खात्मे लाए मुआदो करना चाहे तो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
4: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम, मुकर्रर है डॉक्टर फरहत हाशमी।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाह।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: कल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: इसका अमान।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की सुनिए FM 91.1
1: 10 टाइम्स क्रीम
2: नेटवर्क पर न्यूज़
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: पुनः युग्या ग्रेनुलर मिट्टी जो

0: बेनजीर सिम लेने का आखिरी मौका BISP की जानिब से बार बार याद दहानी
1: क्योंकि जब लड़कियां
2: पढ़ती थे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधो प्या जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
1: वरनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा, सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करण जो मुतालबो। हुकूमत जे अगुरबत जी चकीअ में पिसिजंदड़ अवाम ते वार जारी। पंजे ॾींहं में पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में रिकॉर्ड वाच करे छॾी। 3.40 रुपया महांगो थियण बाद पेट्रोल फी 367.75 रुपया थी वियो। डीज़ल 6.72 रुपया महांगो थियण बाद 392.67 रुपया फी लीटर थी वियो। पंजे ॾींहं दौरान पेट्रोल 22 ऐं डीज़ल 15 रुपया महांगो थियो। कुर्दनि में अमेरिकी अॾे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमेरिका जे केतिरनि ई फ़ौजी जहाज़नि खे तस्दीक करे छॾी। CBC न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिज़रका जा F-15 अमेरिकी फ़ौजीअ खे नुक़सान न आहे। रवानगीअ में कराची में फोरन खीसा खाली हुजण ऐं कुझु बि न मिलण ते शहरीअ खे क़तल करे छॾियो। फोर लुट करे रहिया हुआ त हिकु शख़्स वटां कुझु बि न मिलियो त फोरन मूजिबि फोरन शहरीअ वटां कराचीअ में एमपॉक्स जो वधीक हिकु केस पाकिस्तान जी तस्दीक थी वई। इस्पताल इंतज़ामिया मूजिबि मरीज़नि जे जिस्म ते दाणा ज़ाहिर थियण बाद करायल टेस्ट में एमपॉक्स जी तस्दीक थी। मरीज़ खे आइसोलेट कयो वियो आहे। घोड़ाबारी वेझो शहज़ोर ऐं मोटरसाइकिल में टकर, हिकु ॼणो फोत, ॿ ज़ख़्मी। हादसे में शामीर सोडो फोत थी वियो, शबीर सोडो ऐं अमीर बख़्श ज़ख़्मी थिया। ऐं जापान में हिकु कलाक जी बरसाति तबाही मचाए छॾी। रोड रस्ता तलाउ बणिजी विया। जापानी शहर नागोया में बरसाती पाणी मारत दाख़िल कारवार मुख़लिस बणिजी वियो। रोड रस्तनि ते बीठल गाॾियूं ॿुॾी वयूं। जापानी इख़्तियारनि पारां अॼु बि बरसाति जारी रहण जी अक थी। बीअर बोर्ड जी वार्निंग जारी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़
5: GFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो। अभी बुधो प्या ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
4: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 PM ते सिर्फ

जौसपुर का खास फरमाश जागरण खान उगाई इरशाद डहानी सरवर डहानी रावत डहानी अख्तियार डहानी दीदार कटई फरमाश दिल मुराद कटो असा प्री प्यारा दोस्त दिल मुराद जागीरानी खास फरमाश।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: मस्त मल कही मारू डूंगर खां भी दादा नियर नई का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: It's 12 PM. This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
5: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yuya Granular. Mittiye jo maan.

वकील एक आवाज मुतहद सिंध जो वाज़े पैगाम से यूनिटी डे वारे सर ते वकीलन पारां अदालती कारवाई जो बायकॉट ऐं मुज़ाहिरा कराची खां कश्मोर ऐं कारूंजर खां केटी बंदर ताईं को भी वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची हैदराबाद मीरपुर खास शहीद बेनज़ीराबाद जे सबनर में भी को भी केस न हलियो। नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करण जो मुतालबो।

हुकूमत जे गुरबत जी चकीअ में पिसंदड़ अवाम ते वार जारी। पंजे ॾींहं बि पेट्रोल ऐं डीजल जे अघनि में रिकॉर्ड वाधि करे छॾी। 3.40 रुपया महांगो थियण बाद पेट्रोल फी 367.75 रुपया थी वियो। डीजल 6.72 रुपया महांगो थियण बाद 392.67 रुपया फी लीटर थी वियो। पंजे ॾींहं दौरान पेट्रोल 22 ऐं डीजल 15 रुपया महांगो थियो। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमेरिका जे केतिरनि ई फौजी जहाज़नि खे नुक़सान पहुतो आहे। अमेरिकी मीडिया तस्दीक करे छॾी। CBC न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिज़ाइल हमलनि में अमेरिका जा F-15 जहाज़ A-10 3rd बुलेट मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त कंहिं बि अमेरिकी फौजी खे नुक़सान नाहे पहुतो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीर हाकान फिकडान सां राब्तो ॿिन तरफ़ा लाॻापियल समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। परडे॒ही खाते मूजिबि इसहाक़ डार ऐं हाकान में विच में ओभर जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे-वठ कई वई। सूरतहाल ते सिफारतकारी वारो सिलसिलो जारी रखण ते इतफ़ाक़। सदर आसिफ ज़रदारी लंडन खां ॾे पहुची वियो। सदर आसिफ ज़रदारी जी बरतानिया में एयरपोर्ट जो सिस्टम मुतासिर थियण सबब रवानगी में हिकु ॾींहं जी देर थी वई। कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी अदालती जांच जारी। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार कमीशन आॾो पेश। ज़ियाल अंजार एडवोकेट जनरल जे रवैये ते कमीशन खां माज़रत करे छॾी। जस्टिस उमर सयाल चयो त अव्हां खे घुराइण जो मकसद अवाम जो एतमाद बहाल करण आहे, ॾुखियो कम आहे, वारसनि जो बि एतमाद बहाल करणो आहे। कराची में फौरन खीसा खाली हुजण ऐं कुझु बि न मिलण ते शहरीअ खे क़तल करे छडि॒यो। फोरंगी में हथियारबंद फुरलुट करे रहिया हुआ त हिकु शख़्स वटां कुझु बि न निकितो। फौरन बहस करण ते शहरीअ खे गोली हणी क़तल करे छडि॒यो। ज़रियनि मूजिबि फौरन शहरीअ वटां कुझु बि न मिलण ते खेस क़तल कयो आहे। मलीर जी अदालत कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर ते हमले में मुलविस जवाबदार वक़्ती ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। अदालत पारां 20,000 जा मुतलका जमा कराइण जो हुकुम। लाॻापियल केस में सहकार जी हिदायत। केस जी ॿुधणी 21 सितंबर ताईं मुल्तवी। कराची में एमपॉक्स जो वधीक हिकु केस रिपोर्ट। सरजानी टाउन वासी 45 वरनि जे शख़्स में एमपॉक्स जी तस्दीक थी वई। इस्पताल इंतिज़ामिया मूजिबि मरीज़ जे जिस्म ते दाणा ज़ाहिर थियण बाद करायल टेस्ट में एमपॉक्स जी तस्दीक थी। मरीज़ खे आइसोलेट कयो वियो आहे।

0: ऐं जापान में हिकु कलाक जी बरसाति तबाही मचाए छॾी। रोड रस्ता तलाउ बणिजी विया। जापानी शहर नागोया में बरसाती पाणी इमारतनि, मेट्रोपोलिटन स्टेशन ऐं शॉपिंग मॉल्स में दाख़िल। कारोबार मुफ़लिस बणिजी वियो। रोड रस्तनि ते बीठल गाॾियूं ॿुॾी वयूं। जापानी इख़्तियारनि पारां अॼु बि बरसाति जारी रहण जी अक थी। पीअर बोर्ड जी वार्निंग जारी।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की ही से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: शाहिक और पहचान ट्वर्क सिंध की।
1: It's 12:30 PM. This time
2: check. क्लिंकरे और डायमंड
3: ग्लो इसमें मौजूद फॉस्फ की बढ़ोतरी

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर था भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो लई।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

सिंध बार जे सर ते सिंध जा वकील एक आवाज मुताबिक सिंध जो वाज़े पैगाम सिंध बार जे सिंध यूनिटी डे वारे सर ते वकीलन पारा अदालती कार्रवाई जो बायकॉट ए मुज़ाहिरा कराची का कश्मोर ए कारूंजर का केटी बंदर ताई को भी वकील कें भी अदालत में पेश न थो। कराची हैदराबाद मीरपुर खास शहीद बेनजीराबाद सखर ए लाड़काने डिवीजन के समूर नंडन वरन अदालतन में को भी केस न हलो। नंडन वरन शहर में वकीलन का मुजाहरा सिंध खिलाफ साजिशों बंद करण जो मुतालबो। हुकूमत जहां गुर्बत की चक्की में पिसजंदड़ अवाम ते वार जारी पंजे डीएम भी पेट्रोल ए डीजल के अघर में रिकॉर्ड वाध कर छी। 3.40 रूपया महंगो थियण बाद पेट्रोल फी 367.75 रूपया थी वयो। डीजल 6.72 रूपया महंगो थियण बाद 392.67 रूपया फी लीटर थी वयो। पंजे डीह दौरान पेट्रोल 22 ए डीजल 15 रूपया महंगो थियो। हमदन के नुकसान पहुतो आहे। अमेरिकी मीडिया तस्दीक करे छॾी F-15 जहाज ए ट्रेन थर्ड बुलेट मुतासिर थिया आहिनि जॾहिं त कंहिं बि अमेरिकी फौजी खे नुक़सान नाहे पहुतो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीर सां राब्तो। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। परडे॒ही खाते मूजिबि इसहाक़ डार ऐं हाकान विच में ओभर जे तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। सूरतहाल ते सिफ़ारतकारी वारो सिलसिलो जारी रखण ते इतफ़ाक़। सदर आसिफ अली ज़रदारी लंडन खां ॾेह पहुची वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जी बरतानिया में एयरपोर्ट्स जो सिस्टम मुतासिर थियण सबब रवानगीअ में हिकु ॾींहुं देर थी हुई। सिंध जो घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार तलबीअ ते मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन आरो पेश। ज़ियाल अंजार एडवोकेट जनरल जे रवैये ते गैर मशरूत माफ़ी वठी छॾी। जस्टिस उमर सियाल चयो त अव्हां खे घुराइण जो मक़सदु वारस

अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक झूठ बोलने पर 100 रुपए फाइन लगती तो आप रोजाना कितने पैसे भरते। ओके जी, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी LRKANA FM 88.8 हमारा पेज है जनाब।

ये ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन तो काफी सेंसिटिव है, हम तो कोई प्रोडक्ट लगा ही नहीं पाते, तो हमारी तो काम की ये बात होगी ही नहीं। तो आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इन ही जनाब जो कि आप लोगों के लिए मेडिकेटेड फार्मूला है। जब आप जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे होंगे तो उनको इस चीज का अंदाजा हो चुका होगा, ये जो प्रोमो चल रहा है, ये जो वीडियो चल रही है, तो इसमें जो दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल ये साबित हो रहा है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको किस तरह से अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा, और ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी, क्योंकि ये जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का फार्मूला तैयार किया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के बहुत ज्यादा वाले जो है ना वो फायदे आपको मिलने वाले, और साथ ही साथ अगर आप भी इस्तेमाल करें तो हमारे साथ शेयर कीजिए कितने सारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर आप रابطہ कर सके और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके। तो जल्दी जल्दी से आपने डायल करना है 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 आई बियो नंबर आहे 033-27-38-4309 बुड़ी 332 73-84-309 ओगरी। सो जल्दी से नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी से परचेज करके आइए। ओगरी, तो यहां पर प्रोग्राम में आज बात हो रही है, टॉपिक जो आप लोगों से पूछा है, टॉपिक ये पूछा है कि आप मुझे बताइए, हाँ जी आपने आज थोड़ा सा हिसाब कर लेना है कि आप बैठिए और आप सोचिए कि आप दिन में कितनी मरतबा झूठ बोलते हैं। तो अगर एक झूठ बोलने पर आपको 100 रूपये की फाइन लगती है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि एक दिन में तकरीबन आपका कितना हिसाब होता है कि भाई मुझे कितने पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अंदाजा होगा ना कि आप कितने झूठ बोलते हैं। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और हमें ज्वाइन कीजिए 888-1 और फेसबुक पर। बिल्कुल सी आपके मैसेजेस मुझे ना मिलते जा रहे हैं, तो जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं वो ऐसा किया करें, पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। भाई लाइक आप लोगों का जो होता ना वो मेरे लिए बहुत मायने रख रहा होता है, तो पोस्ट को लाइक जरूर कर दिया करें। और उसके बाद एक आधे दोस्त को हमारी पोस्ट को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो भाई उन्हें भी पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में आ चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के कितने सारे फायदे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले बताइए जरा, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। ओके जी, यहाँ पर अखलाक बलूच हमारे साथ माटूदी, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में माटूदी जी आपको वेलकम कहा जाता है। और फरवा गुल कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आप ही आप कैसी हैं, होप यू आर फाइन, यस गुड, आप बताएं कैसी हैं। मोहम्मद मीरन जखरानी में सुन रहे हैं, जेकब आवाज से भाईजान को वेलकम कहते हैं। और रशीद खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका शो सुन रहा हूं, बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम कहते हैं। और रशीद कोसो कहते हैं आपका प्रोग्राम माशाल्लाह जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आजरे, थैंक यू वेरी मच सर। और फरवा गुल कहती हैं आप ही आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना, आप मेरा गाना नहीं चला रही हैं। गाना ना चलाने की वजह ये नहीं होती कि मैं आपसे नाराज हूँ, बस वो ऐसे ही नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे लोगों की फरमाइशें होती हैं। अच्छा, फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, सलाम अदर अदा छाला खुश सफा चाक स्लेट कलम भाओ जो सफा लाजवाब आहे अवहां वांगे अमा वांगी, यानी थोड़ी तारीफ करी वरी हेठा तमा गाने जी फरमाइश करी सडी आई सही बाबा सही। अब्दुल्ला अली हमारे साथ है, ओके जी अब्दुल्ला अली कहते हैं, हाँ जी लिखते हैं कि लोग बिछड़कर भी बिछड़ते नहीं, वो याद बनकर दिल में हमेशा रहते हैं। अब्दुल्ला शेर क्या बात है जी, आपको वेलकम कहते हैं। और ये हमारे साथ हैं जी अखलाक भाई कहते हैं, छड़ा ताना अंदर 6.5 दिन था घर वारा ये नहीं प्रोग्राम में अच्छी वेंदा आयो। और गुलाम हुसैन अबड़ू लिसनर हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम हो गया। और कासिर खान हमारे साथ है, हाय हेलो। और शुएब मंगी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मुस्कान बिल्कुल ठीक ठाक है, शो सजाद अली साजिद का गाना सुनाए, चले ठीक है जी आपकी फरमाइश भी लगा दी जाएगी। और अच्छा फरमाइशें जो लोग कर रहे हैं ना वो मुझे ये भी बताएं कि आप पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं नहीं, और साथ आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कब करने वाले हैं, क्योंकि एम ही आकर फरमाइशें कर देते हैं, कुछ तो बदले में होना चाहिए ना। ओके
जी स्मार्ट किशोर भाई।

0: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9 मिनटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मेरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको वेलकम कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाएगा कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खूबसूरती के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जानब अगर हम आते हैं तो बिल्कुल जी आपको बताते हैं, लेकिन साथ साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। अच्छा, तो मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा था वो भी जरा रिपीट करते हैं, ताकि अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लिया करें। तो अगर आज आने सवाल आप लोगों को बताएं, तो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं, अगर आप जरा इस चीज को नोटिस करें और काउंट करें कि रोजाना हम लोग कितना झूठ बोलते हैं ये चीज कभी हमने नोटिस नहीं करी होगी शायद। तो अगर एक झूठ बोलने पर 100 रुपए की फाइन लगे तो आपको क्या लगता है कि डेली आपका कितना खर्चा हो जाएगा, कितने पैसे लग जाएंगे, ये चीज आपने मुझे बतानी है। ठीक है, तो आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते रहिए। आपके मैसेजेस और प्यारे प्यारे फीडबैक्स मुझे मिलते जा रहे हैं जिन्हें हम शामिल प्रोग्राम जरूर रखेंगे। ओके, सो लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है जी मार्केट में, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है। ये दो प्रोडक्ट मार्केट में है जो कि आप जाकर परचेज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसा फार्मूला है जिसे स्किन के डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। आप लोगों को इस चीज का थोड़ा सा अंदाजा हो चुका होगा कि जब आप मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स अगर आप वहां देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये हमारे काम की चीजें है ही नहीं, और देखते हुए आपको सारे ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, उस इतने सारे प्रोडक्ट के अंदर उसमें से जो है ना वो सही वाला प्रोडक्ट परचेज करना, सही वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सही वाला प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सही वाला प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि डी स्किन बिल्कुल जी मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार किया गया है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ना सिर्फ नाइट क्रीम है बल्कि ये 2-in-1 फार्मूला है। वो कैसे, क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके अंदर जो ये वाइटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, ये वो फार्मूला है, वो चीजें हैं जो कि भाई आप लोगों के लिए, खास करके खवातीन जो महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं ना, और आप लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई महंगे महंगे फेशियल्स कराएंगे तभी हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं, ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो आपको महंगे से फेशियल कराने के बाद आपको निखार मिलता है। अब ऐसा वाला सीन बन चुका है कि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, आप इतने पैसे भी नहीं लगा सकते हैं, तो आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये 2-in-1 क्रीम है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपके पैसे भी बचाती है, आपका वक्त भी बचाती है, और आपको खूबसूरती भी वो वाली देती है जो आपकी खूबसूरती की हिफाजत करती रहे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल सेफ फार्मूला है, आप इसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और साथ साथ अगर आप डी स्किन का फेस वॉश भी यूज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लाजमी कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के क्या तरीकेकार वो भी सर आप लोगों को बताते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनाब ये नाइट क्रीम है ना, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे भी सही फार्मूला यही है कि अगर आप रात के टाइम इस्तेमाल करें तो सही होगा। सबसे पहले अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिएगा, साफ करने के बाद अपने चेहरे को सुखा लीजिए, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। उंगलियों की मदद से आराम आराम से प्यार प्यार से लगाइए, और इस तरह लगाएं कि क्रीम आपके चेहरे पर थोड़ी सी नजर आनी चाहिए। क्रीम को पूरा ही स्किन के अंदर जज्ब नहीं कराना होता, इससे भी थोड़ा सा मसला हो जाता है कि जब आपके हाथों की हीट आके फेस पर आती है ना, जब आप रगड़ते हैं मसलते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो ऐसे भी थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको अच्छे से रिजल्ट मिले, अच्छा सा आपको निखार मिले, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आराम से हल्के हल्के हाथों से इस्तेमाल कीजिएगा। और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर रूटीन को मजीद खास बना देगा।
اور جناب اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن صاف ستھری ہو, اچھی طرح موئسچرائز ہو, تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے رہیے, کیونکہ آپ کی جلد جو ہے نا یہ ڈیزرو کرتی ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم. تو اور مزید جو پروڈکٹ آپ اپنے چہرے پر استعمال کر رہے ہیں جن کا ہیوی سا فارمولا ہے, تو ان کو ذرا بائے بائے کیجیے, ڈی اسکن بیوٹی کریم کو ہائے ہائے کیجیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو استعمال کرنا شروع کیجیے, ٹھیک ہے؟ چاہے آپ مرد حضرات ہیں, چاہے آپ خواتین ہیں. یہ بھی چیز ذرا تھوڑی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آپ سوچتے ہیں کہ ہم مرد حضرات ہیں تو کیا ہم لگا سکتے ہیں, ہمارے لیے ہیں, بتائیں تو ذرا. تو بالکل جی, آپ مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں, آل اسکن ٹائپ کی اس میں آپ مرد حضرات بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو مرد حضرات بھی لگائیں گے, خواتین بھی لگائیں گی, سب لگائیے, خوبصورت ہو جائیے اور بولیے یہ کمال ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ کے قریبی چینل اسٹورس پر نہیں اویلیبل تو جلدی سے اویلیبل کرائیے اور ڈائل کیجیے 03-12-50-25-907 بڑی 312.

हमारी थोड़ी सिंधी कमजोर है। चलें कोई बात नहीं, आपको सुनाते मजे मजे के गाने, आप लोगों के साथ करते हैं बातें। और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ तक पहुंची, आपकी करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुके नहीं? आप ऐसा कीजिए, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें, कंजूसियां यहाँ पर नहीं बनती।

आप सुन रहे हैं वाई टी एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करें जनाब, आपकी खूबसूरती में इजाफा क्या मतलब बहुत ज्यादा वाला इजाफा आ जाएगा. और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने बातें, तो यहाँ पर सगीर अहमद हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप ही, आप कैसी हैं? आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है, कहते हैं आपका प्रोग्राम अमेजिंग है. आप ही आपका प्रोग्राम बचपन से सुनता आ रहा हूँ. सगीर अली खरल फ्रॉम लाड़काना, बचपन बोलकर मेरे को ऐसा फील कराते मैं बड़ी बुढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन वो मेरा भी बचपन था. जी जी, हम सब का बचपन था. अच्छा, फरमा गुल कहती हैं आपका शो शेयर और लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच प्यारी. अरशद मरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम अरशद, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? कहते नाइस शो फ्रॉम खैरपुर सिटी. ओके, क्या बात. किशोर भाई कहते हैं कि मैं वो झूठ बोल, लोगों को खुशी मिले जैसे तारीफ करते हैं, अपनों का दिल रखते हैं ऐसे समझी ना चरी. जी जी माँ, समझी वैसे.

19 नूरियाबाद कनेक्टेड योर शो ओके आपने हमारा प्रोग्राम कनेक्ट किया है क्या बात है जी आपको वेलकम कहते हैं सही से प्रोग्राम कनेक्ट किया करें नूरियाबाद के लोगों को सही से प्रोग्राम सुनाया करें ठीक है कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए हाँ वेलकम कहते हैं आपको।

ओके जी जी खास करे केदे अंदाजो ही कोने बाबा कूड़न जो टॉपिक ते गालायो था सही सही अली रजा कहते हैं अली रजा आप हमें दुबई से सुन रहे हैं मुख्तार अली शीरी का गाना सुनना चाहते मैं कोशिश करूंगी आप सब भाइयों की फरमाइशें लगाएंगे और गुलाम फरीद बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हाल चाल है आपके सारे लोग ठीक है आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है थैंक यू और हमारे साथ है जी अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तू जी

जी हजूरी बाबा ऐ न्यू हालवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई था कोन इते त हामी भरियो के जो बेते दिस जो बात कोन खुलंदव

जी बिल्कुल, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। अनवर भाई आपका मैसेज अच्छा है लेकिन ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम कहते हैं। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि ये बड़े एक साथ हो रहे हैं। हाँ हम सब बड़े एक साथ हो रहे हैं, सही बात है। मैं मतलब सही है, कुछ नहीं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए। ऐसा ही कि फिर मुझे सुनने को मिलता है कि आप प्रोग्राम में सिर्फ मैं कर दिए। मैं बकरी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और अनवर भाई कहते हैं कि मोहल्ले की मोहब्बत का भी एक अलग ही फसाना था। हाँ जी सही बात है, सही बात है। बचपन बड़ा शहाना था, खिलौने तोड़ देता था नया लेने की जिद में। मुझे भी याद है मैं किस कदर नादान होता था, मासूमियत और तड़प। लौटा दे कोई मुझे वो बचपन के दिन, ना कोई फिक्र थी ना कोई गम था, अब तो बस हसरतें ही हसरतें हैं दिल में। काश वो हो, फिक्री का जमाना फिर आ जाए। हाँ भाई ये काश ही रह जाती हमारी जिंदगी के अंदर। कोई नहीं, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई, ऐसा नहीं कि फिर आपकी जिंदगी में काश रह जाए कि काश असान डी स्किन ब्यूटी क्रीम अड़ूंगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर जो सैया। अच्छा सगीर कहते हैं झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, मगर फिर भी कभी कभी 100 का फाइन लग सकता है, मगर फ्यूचर में ये कोशिश करेंगे कि ये 100 का फाइन भी कभी ना लगे। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, यू बुद्धि डाडू भलो लगो अल्लाह। और सारंग अकबर कहते हैं कि डन, नूरियाबाद वाले शो को कैसे ज्वाइन करें काइंडली हाईलाइट करें। जी नूरियाबाद वाले आसान तरीके से हमें ज्वाइन कर सकते, एक तो ये हमारा लाड़काना का पेज है, जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप नूरियाबाद वाले सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा ये जो फेसबुक वाला पेज है ना ये मिल जाएगा, और वहाँ पर आप आकर हमारी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अदरवाइज अगर आप हमें सिंपली मैसेज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, सबसे पहले आपने लिखना है LRK। ओके जी LRK लिखिए, उसके बाद सिंगल स्पेस दीजिए, अपना पूरा मैसेज लिखिए विथ नाम, और उसके बाद अपना मैसेज जो है वो सेंड कीजिए 8881 पर। बिल्कुल जी ये सिंपल से तरीकेकार हमारे सिंपल से प्रोग्राम में शामिल होने के। तो और मुझे बताइए नूरियाबाद में कितने सारे लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप तैयार हो सकेंगे? हाँ जी भाई जान, हम भी लगाएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे ताकि हम भी खूबसूरत हो जाएं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और पहली मरतबा ऐसा वाला सीन बन चुका है कि आपके लिए मार्केट में, और इनफैक्ट देखा जाए तो पाकिस्तान में ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, ये पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जो कि बनाए गए हैं इस तरह, जिनका फार्मूला इतना मजेदार रखा गया है कि ये 2-in-1 है। यानी कि अगर आप ये नाइट क्रीम लगाते हैं तो बस इनफ हो जाता है, आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फेशियल वाला जो निखार है ना वो मिल जाता है, आपको अलग से कोई फेशियल करने की नीड भी नहीं हो जाएगी। तो बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप परचेज करेंगे तो आपको अंदाजा

डोले की पानी मर्जी ते न चढ़ी न कयो डोलो मते ते चढ़ी वेंदव किशोर भाई कहते हैं कि मायूं चवंदियो आए न तो केड़ी हाय लगी आहे तो के केड़ी हाय लगी आहे न उहा हाय उन हाय जी गाल नाया कंदे वैसे त अमी चवंदिया कि जी हाय न वटजे बिल्कुल वैसे उहा हाय न ये भी हाय जका हेलो हाय वारी हुंदी आ किते अगर असा पाजी जुबान में मुंजी वणियो त समझो असा आलसी आयो बिल्कुल मां भी यो ही चवंदी आ और म्यूजिक जी तारीफ कई आ तवा वाह वाह वाह वाह एड़ी गाल कंदा न त पो मां इलाही सारा तां के अंग्रेजी गाना बुधाईनी मां भाई 100 रुपए जो एकड़ो फाइन एक्स्ट्रा लगाइंदो तो केड़ो ताके डो मिलंदो 100 रुपए एकड़ो एक्स्ट्रा भरियो ठीक आ समझी होया हुंदा चलो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए कंजूसी कंदायो ते ता असानी पोस्ट के लाइक न कंदायो अल्लाह से डो दींदा वाला।

ओके जी अंगड़ भाई कहते यदि आम के साथ रोटी खाओ तो सलाद हव अन्या तई अम्मा हलन था छा भला फही भाई कहते दादा टॉपिक बताओ मैंने नहीं सुना काम से गया हुआ था टॉपिक यो पुछो आ तो तमा मुखे बुधायो अगर एक कूड़ गालाने ते 100 रुपयो फाइन लगे तो तमा अंदाजो लगाए तमा डी में केतरा पैसा जको आ ना वो फाइन दई छडियो आ छो तो मानो हर को डेली इलाही सारा कूड़ गालाइंदो आए ठीक है तो तमा जल्दी जल्दी मुखे बुधायो इन का अलावा तमा सनी पोस्ट के लाइक शेयर के नालो जिन खोड़ सारा मानो असकी प्रोग्राम में ज्वाइन करे सकन खोड़ सारा मानो बुधी सकन तो मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जाने चर्चा हली रहा है इतने टाइम थो बाबा वनू था अस न्यूज ब्रेक की तरफ पुछा वापसी जल्दी मोटी तवा नींदी तवा कारे न वंजो ते वेठा होजो असा ओही वनी ओही मोटू था सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Hardiya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मां
7: पाक सऊदी अरब जी खुद मुख्तियारी है सलामती अला हिमायत जारी रखंदो पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियती और लॉजिस्टिक सहूलत ला मौजूद है पाकिस्तान सऊदी ते उसी हमलन जी मजम्मत कर चुको है अफगान शागिर्दन ते भी पाबंदी वारी खबरों दुरुस्त ना हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऑटो पॉलिसी 2026 की मंजूरी दई छी ऐलान IMF की मंजूरी बाद कयो वेंदो ऑटो पार्ट्स के बरामदाद वधाय लाए आलमी वैल्यू चेन जा गढ़ण ए पंज

0: वाला एंकर इदारा ठाहिण जी तजवीज़, बरामदे ऑटो पार्ट्स ते दरांदी वेंदी ड्यूटी खत्म करण जी भी सिफारिश कयल। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमेरिका जे केतिरनि ई फौजी जहाज़नि खे नुक़सान पहुतो आहे। अमेरिकी मीडिया तसदीक करे छॾी। सीबीसी न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिज़ाइल हमलनि में अमेरिका जा F-15 जहाज़ A-10 थर्ड बोल्ट मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त कंहिं ॿिया अमेरिकी फौजीअ खे नुक़सान न आहे पहुतो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीर सां राब्तो, ॿिन तरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे। परडे॒ही खाते वज़ीर मौजूब इसहाक़ डार ऐं हाकान में विच ओवर जी तब्दील थींदड़ सूरतयाल ते ख़्यालनि जी ॾेवठ कई वई आहे। सूरतयाल ते सिफारतकारी वारो सिलसिलो जारी रखण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आला हाउस में भुट्टो स्टेम स्कॉलरशिप बाबति प्रोग्राम। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह, तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह ऐं ॿियनि जी शिरकत। तकलीफ़ खे ख़िताब कंदे सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध जे चूंडियल होशियार शागिर्दनि खे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ण जो मौको मिलियो आहे, जंहिं लाइ रक़म सिंध हुकूमत ॾेई रही आहे। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त ऑक्सफोर्ड वेंदड़ 5 शागिर्दनि जे कुल्हनि ते डिग्रियुनि सां गॾु सिंध जूं बि उमीदूं वाघियल आहिनि। उमीद आहे त शागिर्द सिंध जो ॻाट ऊचो कंदा। सिंध जो घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार तलबीअ ते मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन आयो पेश। ज़ियाल अंजार एडवोकेट जनरल जे रवैये ते गैर मशरूत माफ़ी वरिती। जस्टिस उमर सयाल चयो आहे त अवां खे घुराइण जो मक़सदु वारसनि ऐं अवाम जो एतमाद बहाल करण आहे। एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर ज़िमेवाराणो ऐं तसई कामेज़ हो। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो आहे त सिंध हुकूमत केस जी शफ़ाफ़ जांच चाहे थी। कमीशन जे नतीजनि ताईं पहुचणु ज़रूरी आहे। ज़िमेवारनि खे मुंतकी अंजाम ते पहुचायो वेंदो। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारां डॉक्टर उसामा जे जवाब ते बेएतमादी ज़ाहिर। 15 सितंबर ते ज़ाती हैसियत में तलब कमीशन SHO अदील अफ़ज़ाल, हेड मरर ज़िशान, डॉक्टर सीमा ऐं प्रोफेसर नसीम खे 14 सितंबर ते तलब करे वरितो। कमीशन जे रजिस्ट्रार चयो आहे त शहरनि बि केस बाबति ॼाण ॾियण शुरू करे छॾी आहे। हिकु शहरी पारां बाउंस अकाउंट ते ॼाण फराहम करण ते राज़पो का ज़ाहिर कयो आहे। ॿिए शहरी डिजिटल फुटप्रिंट्स बाबति ॼाण ॾिनी आहे। हिकु शहरी केस में मशकूक शख़्स जी निशानदेही कई आहे। कमीशन ॼाण ॾींदड़ शहरनि जी सुञाणप ॻुझी रखण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कराची जे एतिसाब अदालत खे लिफ्टन में प्लाट जे गैर कानूनी अलाटमेंट वारे केस में वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾियो। मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया 15 सितंबर ते तलब एतिसाब अदालत। वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल SDCA जे अॻोणे DG इफ़्तिखार क़ाइम खानी, अॻोणे DCO फज़ुल रहमान, KDA जे अॻोणे DO मुमताज़ हैदर, KDA जे एडिशनल DO सैयद निशात अली रिज़वी, मोहम्मद रफ़ीक ऐं ॿियनि खे तलब कयो। नवां सूबा तमाशो ऐं रोन शो आहे। ही सूबा ठाहिण न पर सूबा ख़त्म करण जी साज़िश आहे। कुझु माण्हू कराचीअ खे सिंध खां STP सरबराह डॉक्टर कादिर मंसी चयो आहे त कराची जी मिल्कियत ऐं आलमी अहमियत ते कब्ज़े वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। वन यूनिट ठाहे सूबा ख़त्म कया विया हुआ। हिन वक़्त बि नंढा नंढा यूनिट ठाहिण कब्ज़ो करण जी साज़िश आहे। सॼी सिंध हिकु आवाज़ आहे, क़ौमी बका लाइ पुरअमन ऐं तारीख़ी जिदोजहद कई वेंदी। रोड़ी जी मच्छर कॉलोनीअ में घर जी मरम्मत दौरान छित किरण सबब मज़दूर दबजी फोत थी विया। फोत थियल मज़दूरनि में अजीब ऐं राहे लवासी शामिल आहिनि। पुलिस मौजूद ॿिए मज़दूर मच्छर कॉलोनी में अवेश शेख जे घर जी मरम्मत जो कम करे रहिया हुआ त घर जी छित किरण सबब मलबे हेठां दबजी फोत थिया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि खूबसूरत कैसे हुआ जाता है और खूबसूरत अगर आप चले हो भी जाते हैं लेकिन उस खूबसूरती को मेंटेन करना कितना ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर आप सही से मेंटेन नहीं कर पाती अपनी खूबसूरती को और आप ये चाहते हैं भाई थोड़ा सा कोई कुछ बता दे हमें, वैसे कुछ लोग अगर मार्केट में आप जाते हैं तो आपको ऐसे बताते हैं कि भाई ये वाला प्रोडक्ट ले जाएं ये वाला ले जाएं, उनको कोई गर्ज नहीं होता कि भाई आपकी स्किन जो है वो किस टोन की है, आपकी स्किन के ऊपर किस तरह के प्रोडक्ट लगाए जा सकते हैं, बस उनको अपनी चीजें बेचनी होती है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि भाई इन तमाम चीजों से आप बच जाएं, आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने वाले लोग जितने भी हैं उन सबका पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। यकीन जाने पॉजिटिव क्यों ना रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेडिकेटेड फार्मूला है। और जनाब अगर आप मार्केट जाते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मालूमात लेते हैं, दुकानदार को बोलते हैं भाई साहब डी स्किन ब्यूटी क्रीम दीजिए और वो आपको कोई सी भी क्रीम पकड़ा देता है, बोलता है हाँ बाबा ये तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो कुछ दुकानदार ये भी करना है। अगर तुम्हें अतो पतो खबर न हुजे का खबर न हुई तो तुम जाहिर सी गल स्कीम में फंसी वेंदा। अगर तुम चाहे था तो बाबा थोड़ा बुधाए सदरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम की आए असा वनू तो असा की मालूम लगी असा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डब्बी है ना जो बॉक्स से डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे उते तमा के कड़ी डॉक्टर माई जो फोटो नजर इंदो, ठीक है डॉक्टर माई जो फोटो आए तो ता समझी वनो बाबा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे का ता के रिजल्ट दे पई सिर्फ ए सिर्फ ब रातन जे इस्तेमाल सा, सो ब रातो अगर तमा इस्तेमाल करे था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे तमा के सफा परफेक्ट रिजल्ट मिली वेंदो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे का हर स्किन वारो मानो इस्तेमाल करे सके तो, उन का अलावा अगर तमा मर्द हजरात आयो खवातीन आयो हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करे सके तो, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐ खूबसूरत खूबसूरत दिखा जो बाबा। अगर ये भी सीन आए तो तुम पान नथा इस्तेमाल करे सको, चलो कोई मसलो आ कोई इशू आए तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल नथा करे सको तो तुम कहीं पांचे पिरी प्यारे के गिफ्ट भी दई सको था। हाओ सही हो दव तुम अगर कहीं पिरी भी कंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो इन सा भी मोहब्बतू वदंदी आए, उन के चओ बाबा तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका जे तुम गिफ्ट कई हो जी इस्तेमाल कदो ना तो उनके खबर पवी वाकई बाबा ही तुम भले उनके एक डब्बी डींदा ना हू पान पो वो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम एडी भली आए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम भी इस्तेमाल कर मानुन के भी भाई बुधा तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर, जैसे घर में शादियों आन या फिर तुम्हारी पांजी शादी थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर शुरू कर छो। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तुम पाँच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराने चाहो था केड़े भी सिटी का तुम्हारा तालुक केड़े भी गोठ का तुम्हारा तालुक घर वेठे पाँच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था, का घड़ी मेहनत न लगंदी बस तुम्हें ही नंबर जो बुधा पे नंबर से राबो करो पवो, नंबर से राबो करने का फौरन बाद ही तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वेंदी। सो नंबर आए नोट करे वो ओके जी, नंबर है 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 आई बियो नंबर आहे 033-27-609 बुड़ी 332 73-84-309।

बिल्कुल जी, सो नंबर से राबतो कयो, पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, तव्हां वञी आसानी सां परचेज करे अचो, ठीक आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांजी खूबसूरती जे लाइ ॾाढी ज़रूरी आहे, तव्हां सभु इस्तेमाल करे सघो था, हर स्किन जे मुताबिक़ आहे ऐं तव्हांखे यकीन ॾाढो फ़ाइदो पहुचंदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे जेका तव्हां इस्तेमाल कयो पिया, ऐं ॿुधायो मूंखे हाल अहिवाल, किथे पहुती, केरु केरु इस्तेमाल करे पियो, इस्तेमाल कई आहे या फिर अञा ख़ाली सिर्फ़ ॿुधो पिया आहियूं, मतिलबु सोचो पिया त हा असां बि वठी ईंदासीं। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जल्दी कयो बाबा, वठी अचो। ऐं हिते अगरि असां तव्हांजे मैसेज जी तरफ़ अचूं था, त पैनल ते तव्हांजा खोड़ सारा मैसेज जमा थी विया आहिनि, ऐं पैनल ते असांखे ज्वाइन कयो आहे

खुलेली सलामत। बेवस बलोच दरगाह साईं जमाल शाह मोरो से आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज माशाल्लाह इलाही भली आहे। सो थैंक यू तव्हांजो मोहबतूं आहिनि। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कंदा रहिजो और शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खां

ॿुधी हाय आप ई खीजे सितारा कहती है यो शो मंजूर का सॉन्ग सुनाओं मास्टर मंजूर जो भलो गानो हलाए वठंदासीं ठीक आहे और ये हमारी साथ मैसेज किया करे ना तो अपना नाम लाज़मी लिखा करें बिना नाम के जब आप मैसेज भेज दें तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ये किसने मुझे हमें कहते हैं कि विलेज अल्लाह विरायो जो मैसेज मुख्य लगे तो अगे विया पर मुख्य सुबह प्रोग्राम बुधो पया नाम रोज सुनता नाइस आपकी मुस्कुराहट अच्छी है तो अपना लिखना स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल हमारी फजली के जी आप बताएं कि to my sweetheart mom and kaina sunne wali sisters ko hum daily basis jhooth bolne padne lagti to aapko kya lagta hai ki aapka ek din ka hisab kathe vani pohche itra kood galainda hai tawante depend kare to mukhe budhayo hek din mein tawajo hisab kithe pohche ya budhayo ta khabar to pave and these can beauty cream istemal kariya kon agar message kayo pa to iyo lazmi budhay chajo unka alawa hi dado bhalo gaano list mein lagaywa so gaano budhun tha

जी मकसूद मल्हा कहते हैं जी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है सदरा मुस्कान, मुझे शमन का गाना सुनाना। बिल्कुल जी, आपको शमन का गाना सुनाते हैं और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है जी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं सारे लोग, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जैसे मकसूद मल्हा ने बता दिया है। ओके जी, आपको वेलकम कहा जाता है और साथ ही साथ बाकी जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए।

ओके जी इटी कोशिश क्या पे मोरो तो समझ में आया पर अगते शहर छडे वने तो या अच्छे पयो गाल समझ में कोना चलो मोरो में भी तवा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिली वेंदी अगर ता मोरो वनो पया या मोरो छडियो पया ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरूर वठदा वंजो पाण सा गडे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जके मानो तो तवा भी इस्तेमाल कयो सोना सोना थी वने री सकोन थी अच्छी छा भला अच्छा गुलाम फरीद बलोच लिखते हैं कि कुछ चीजें मालूम नहीं महसूस की जाती हैं जैसा कि किसी की जिंदगी में अपनी जगह बदलता रवैया लहजे में बेजारी और अजनबियत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और कासिर खान कहते हैं राजा लंदन का ओएसटी लगा दो बिल्कुल सी लगाते हैं पर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमान भाई लिखते हैं कि नेटवर्क खराब था नी तो हर सवाल का जवाब है बुआ जी क्या मतलब अच्छा नसीम गुलाम हमारे साथ हैं कहते हैं कि जब वक्त खराब चल रहा होता है तो पीछे से हंसने वाली आवाज जानी पहचानी लगती है क्या बात है जी क्या कमाल बात आपने बोल दी है और बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहा जाता है किशोर भाई कहते हैं कि अगर तू चाहे पोस्ट के लाइक एंड शेयर करण वारन के 100 रुपया ॾींदस त ॾिस केतिरा लाइक एंड शेयर था मिलनि बिल्कुल तां सही रमज़ान भाई कहते हैं कि सलाम बहनाओं कैसी मुलायम इस्लाम अदर मैं कल आपसे गाने की फरमाइश कर चुका था बिल्कुल जी आपने गाना बोला मेरे ही पास तुम हो इतने थके हुए गानों की फरमाइशें मुझसे करते हैं तो वो मैं नहीं लगा पाती हूँ तो अच्छी अच्छी गाने फरमाइश किया लगे और भाई कहते हैं कि पोई नजर आया आयो नूरियाबाद

अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि दादा ऐसे टॉपिक रखकर आप ये जानना चाहती हैं कौन कितना झूठा है। मेरा आंसर भी तकरीबन 1000 पक्का। हाल यो सही मतलब लिमिटेड आयो थोड़ो एडो ना है यानी कि तहां वेही अगर ई हुजिया वाकई मानू एकड़ो कूड़ गला है हां त 100 रुपयो फाइन देनो पवे त दोस्तन में वेही करे खबर थी जेके ड्राड़ी मानू जना उ केड़ी ड्राड़ा हड़ना त तो खबर आ मकेडो अमीर आ मा डेली 2-3 हज़ार जो कूड़ गलाइंदो आयो मानू चवंदा वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाकई अमीर आहे डेली 2-3 हज़ार जो कूड़ ॻाल्हाए थो महसूस थींदो ॻाल्हायो आहे ॾिसो मूंखे एॾो भलो कमु कयो आहे पर हालांकि इहो न कयो ऐं हुन खां अलावा मूंखे ॿुधायो थी विया आहे चक कोन्हे को डी स्किन ब्यूटी मां हुननि खां पुछा कयो हुननि गुलाम फरीद भाई लिखते हैं कि सारे दुनिया के सारे लोग आपको अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ आपका रब ही है जो आपको अपने फायदे के लिए चाहता है। एग्री करता है वो रिएक्ट करें दिल लगा पोस्ट को रिएक्ट और वैसे हम एग्री करते हैं इस बात से बहुत है। और नसीम सॉन्ग से मुझे कोशिश किया थोड़ो बाबा फरमाइशन थी ब्रेक लगाईंदा कयो ब्रेक समझो था ब्रेक ते पेर हुजे। बिलाल अली हमारे साथ है कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम आपको वेलकम कहा जाता है। कहते काश कोई मेरा भी वेट करता। जी जी बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम में आया करें डेली। और संजय जी पाल हमारे साथ है संजय जी पाल आपको भी वेलकम हो गया। और नसीम भाई कहते असां अॼु वठूं था अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां अॼु वठो था बिल्कुल वाह वाह वञो वठी अचो। हिदायतुल्ला कहते कि मुझसे नहीं विसरता तुम्हारा प्रोग्राम चाहे नूरियाबाद पर हो या 88 लाड़काना पर। वैसे मैंने भी देखा है ऐसे लोग जो कूड़ मारते हैं और अपने करते हैं। हाँ बिल्कुल या खैर क्रीम कॾहिं था लॻायो। अच्छा ये है ठरी मीरवा से मोहम्मद इब्राहिम खास खेली कहते अदी सदरा अच्छा कहते हैं खैरपुर वाया आहिनि खैरपुर वारा कावड़े जी विया आहिनि ईअं हरू भरू चलो राज़ी ईअं थींदा जॾहिं तव्हां हुननि खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कंदा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम खैरपुर वारनि खैरपुर वारा जल्दी में राज़ी थी वेंदा तव्हां सां। और बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ और ये कहते हाय मैडम आप कैसी है प्लीज प्ले चमन का गाना। और हसन देपारजा से सिंध की रानी आप कैसी है हसन अली हसन मेहरापुर से हमारा शो सुन रहे ओके जी आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। मेहरापुर में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो जाइएगा और परचेज। आप यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आप मौजूद रहिएगा सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी 3 बजे तक। व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए।

0: It's 2:30.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना

0: तू हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधंदा रहो उधंदा रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemmé Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemmé Diamond Glow Bleach Cream,
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी।

0: आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। क्यों हिला दिया ना
1: बुद्ध बुद्ध।

ओके तो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, जो लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया या फिर स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मादली, नाडी, टूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो के साथ मौजूद हैं।

ओके जी ओके, कितना प्यारा गाना सुनाया, ॾिसो ॾिसो जॾहिं तव्हां फरमाइशूं न कंदा आहियो न पोइ मां एॾा भला भला तव्हांखे गाना ॿुधाईंदी आहियां। अगरि सो मास्टर मंज़ूर जे गाने जी बि रैंडमली गाना शुरू थी, उन खां अलावा अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ छो ज़रूरी आहे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाने वाले लोग बड़े ख़ुशि हुई भई अपनी ज़िंदगी में, तो हम भी ये चाहते हैं कि आप जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप सारे लोग डी स्किन कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा पाकिस्तान में प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बन चुका है, जो कि भई सरकार के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूटामेट, ये तमाम चीजें भी अच्छी है स्किन ब्यूटी क्रीम, यानी कि ये नाइट करेगी वाला देगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बनाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरत हो सकते हैं। अगर आप अपनी जिल्द को नरम मुलायम स्किन केयर करना चाहते हैं, खूबसूरती में आप हमेशा आगे रहना चाहते हैं, एक नी फ्री स्किन चाहिए स्किन चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी, आपकी स्किन केयर ना और निखारे ना वो भी वापस आ जाएगा। तो ये में हमेशा आप लोग मुनासिब केयर होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो रोजाना अगर आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं कि भाई आप बैठ

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि आप इंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, बात आई दख्तर के गाने की, मैंने शायद उस दिन या अगले दिन आपकी फरमाइश का गाना लगा लिया था, कहते हैं कि चले हाँ आपका गाना जो है ना हम सुन लेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और ये जनाब कहते हैं मैडम कैसी है आप, प्लीज गाना अली हसन देपारजा से हमारे साथ, बिल्कुल अली हसन भाई आपके लिए गाना लगाते हैं, थोड़ा सा सबर कीजिए जरा। कहते हैं कि जदें गिफ्ट करें आप भाई छो था सभी के घुमाना था मां तव्हांखे गिफ्ट कंदसि, बिल्कुल मां तव्हांखे गिफ्ट न कंदमि, तव्हांखे थोरो ख़र्च करणो पवंदो।

अचो और किशोर भाई कहते दादा तो कड़े सोचो आ तोखे केतरो फे मड़ई वे ड्राइव 4000 न मजाक थे क्या कोशिश करना है तो कूड़ न गाल समझो था कोशिश करना करो अच्छा रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है अच्छा नसीम भाई कहते हैं कि वक्त बदलजी वेंदो हालतों भी बदलजी वेंदियों पर जेके दिल में घर करे वेंदा से मानू कदें भी विसरी ना आन सकदा इज्जत लफ्जन सा न किरदार सा मिलंदी आए मोहब्बत दुआन सा न वफा सा साबित थींदी आए वाह वाह वाह वाह वेरी नाइस अच्छा बिलाल कहते हैं कि समझ नहीं आता किसी को अपना कहूं सब अपने होकर भी पराए लगते हैं हाँ भाई हाँ या गाल आहे यो तां सही था चो ओला केड़ो केड़ो गानो ना अपनो का मिला है पर असा अकेला है सो बिल्कुल उआ ही गाल असा के ते आसपास सब पांजा नजर अचन था पर अलाए छो ये दिल चवे थी ता अकेला आयो ओके सो एकड़ो ही डाडो भलो फायसाची आवाज में गानो लगायो आजकल ही गानो मखे वणे थो सो अचो तने गाने के बुदू था

ना बाबा एड़ी भी गाल कोने का। अच्छा रमजान भाई भी आसरो करे बैठो आता दी मुखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट करवाना है। अगर सिद्रा का शो सुनना चाहते हैं तो फाइबर लगायो बाबा फाइबर। और फहीम भाई कहते हैं कि भाऊ आज सीएम नानेट चल रही है, चल रही है। अरे भाई मसला का कोई टेंशन की बात नहीं, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए।

अच्छे वाजो गो हूंदो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए न उहा बि तव्हांखे सुठी लॻंदी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो अच्छा मर्द मायूं सभी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघनि था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हां ख़बर आहे त मेडिकेटेड फार्मूलो आहे यानी की डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे स्किन जा जेके डॉक्टर हूंदा आहिनि उन्हनि तयार कयो आहे यानी कोई बि टेंशन जी ॻाल्हि न आहे त बाबा हिन में केमिकल हूंदो हे हूंदो हो हूंदो तव्हां बेफिक्र थी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था

हलो बाबा हलो छुट्टी करायो फायज़ा की वारो गानो भी लिस्ट में आए सो बिल्कुल शमन जो गानो भी बुधनासी अपास महरा से सगर मौजूद है अपास महरा ताजो मोहब्बतवान प्रोग्राम बुधो पया बाबा और और और और और कौन हमारे साथ है फरवा हमारा शो सुन रही है फरवा बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर किया कर दी जरा थोड़ा टाइम बचा है हमारे पास अच्छा यानी तुम सब जिद करे वेठा न क्यों बाबा जिद न करो जिद न करो न न किशोर भा सिर्फ 3-4 हज़ार रही एडो ज्यादा न टेंशन न करो परवा कहती आप ही मुझे भी हाँ जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप तोहफा दे सकती हैं सबको दें ठीक है और मुखा आसरो न करो बाबा सुमाटो गोपांग कहते हैं कंबर सिटी से सुन और फायजा का गाना आपको अच्छा लगा बहुत शुक्रिया बुधूं था बाबा बुधूं था अच्छा अदो के ये हकीकत है शुक्रिया था

0: GAFM अपना शहर अपना घर मठियारी और
1: PM this time to you wife skin

शफ़ाफ़ जांच चाहे थी। कमीशन जो नतीजनि ताईं पहुचण ज़रूरी आहे। ज़िमेवारनि खे मुंतक़ी अंजाम ताईं पहुचायो वेंदो। सीनियर वज़ीर शर्जील इनामेवण जी सदारत हेठि ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास लॉजिस्टिक पार्क जे क़याम ऐं 500 ईवी बसिस जे ख़रीदारी लाइ काबीना खां मंज़ूरी वठण जो फ़ैसिलो। शर्जील इनामेवण चयो आहे त लॉजिस्टिक पार्क जो क़याम कराची वासियुनि लाइ इनकलाबी कमु हूंदो। शहर जो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलना रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे. तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 3:30 PM. This time check is brought to you by
2: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: ये भी तो जुर्म ही हुआ ना कि इंसान को दुनिया कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोच।

0: बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना फिर सामने तमाशा बन गई। मामा।

0: तो तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: GFM 88
4: नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: It's 4 PM. This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर निहा जोशो, a product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
6: Brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
8: एंकर मैन्युफैक्चरिंग इदारा ठाहिण जी तजवीज बरामदी ऑटो पार्ट्स ते दरामदी ड्यूटी खत्म करण जी भी सिफारिश। उर्दन में अमेरिकी अडे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमेरिका जे केतरनि फौजी जहाज़नि खे नुक़सान पहुतो आहे। अमेरिकी मीडिया तसदीक करे छॾी आहे। CBC न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिसाइल हमलनि में अमेरिका जा F-15 जहाज़ AT-3rd बोल्ट मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त कंहिं बि अमेरिकी फौजी खे नुक़सान न आहे पहुतो। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जो दिफ़ाई सहकार जारी आहे। दिफ़ाई मुआदे ते अमल दरामद लाइ वक़्तु घुरबल आहे। परडे॒ही तर्जुमान सजाद अहद ख़ान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब जी खुदमुख्तियारी ऐं सलामती लाइ हिमायत जारी रखंदो। पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियती ऐं लॉजिस्टिक सहूलियत लाइ मौजूद आहे। पाकिस्तान सऊदी ते हूसी हमलनि जी मज़म्मत करे चुको आहे। अफ़गान शागिर्दनि ते बि पाबंदियुनि वारियूं ख़बरूं दुरुस्त न आहिनि।

0: जेके भी इन्हनि जा नाता किरादा आहिनि सिंध खे तक़सीम करण जा, उन जे असां बिल्कुल ख़िलाफ़ आहियूं।
1: सिंध जा माण्हू सम्झनि था हुन जे वादानत ते वार आहे।
2: सिंधी मां मिलंदो असां सिंध सां गॾु आहियूं, कंहिं बि असां पाठ सां गॾु कॾहिं बि न बीहंदासीं।
3: सिंध जो अवाम न अॻे कॾहिं सिंध खे तक़सीम करणु ॾिनो आहे, न हाणे ॾींदासीं।
4: कुझु बि थींदो सिंध वारनि ॾींदासीं,
5: पर सोचूं था त सिंध जी विरासत न पर असां सिरनि जी विरासत कंदासीं।
6: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ करण जी साज़िश
1: आहे। सिंध जो ग्राम असांजे नामंज़ूर आहे।
7: धरतीअ जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं उन जो सबूत आहे जो ख़्वाब ॾिसंदासीं। सिंध जो टुरण जा हिन जा इहो ख़्वाब असां चटना जो कंदासीं। सिंध जा मज़दूर, सिंध जा हारी, सिंध जा उस्ताद, सिंध जा शाइर, अदीब, वकील फ्रंट ते हूंदा।
8: सिंध बार जे सर ते सिंध जा वकील हिकु आवाज़। मुतद सिंध जो वाज़ पैगाम। सिंध बार जे सिंध यूनिटी डे वारे सर ते वकीलनि पारां अदालती कार्रवाई जो बायकाट ऐं मुज़ाहिरा। कराची खां कश्मोर ऐं कारूंजर खां केटी बंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़कानी डिवीज़न जे समूरनि नंढनि वॾनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा। सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करण जो मुतालबो। स्टेम स्कॉलरशिप बाबति प्रोग्राम। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह, तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह ऐं ॿियनि जी शिरकत। शागिर्दनि खे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ण जो मौको मिलियो आहे, जंहिं लाइ रक़म सिंध हुकूमत ॾेई रही आहे। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त ऑक्सफोर्ड ईंदड़ पंज शागिर्दनि जे कुलनि ते डिग्रियुनि जा गॾु सिंध जूं बि उमीदूं वागियल आहिनि। उमीद आहे त शागिर्द सिंध जो गाट ऊचो कंदा। सिंध जो घरू वज़ीर सियाल अंजार तलबीअ ते मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमिश्नर रूपेश सियाल अंजार एडवोकेट जनरल जे रवैये ते गैर मशरूत माफ़ी वठी छॾी। जस्टिस उमर सियाल चयो आहे तव्हां खे घुराइण जो मक़सदु वारसनि ऐं अवाम जो एतमाद बहाल करण आहे। एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर ज़िमेवाराणो आहे। घरू वज़ीर सियाल अंजार चयो त सिंध हुकूमत केस जी शफ़ाफ़ जांच चाहे थी। कमीशन जे नतीजनि ताईं पहुचण ज़रूरी आहे। ज़िमेवारनि खे मुंतक़ी अंजाम ते पहुचायो वेंदो। सीनियर वज़ीर शर्जिली नामे मंज़ारत हे ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास। लॉजिस्टिक पार्क जे क़याम में 520 बसिस जे ख़रीदारीअ लाइ काबीना खां मंज़ूरी वठण जो फ़ैसिलो। शर्जिली नामे में चयो आहे त लॉजिस्टिक पार्क जो क़याम कराची वासी लाइ इनकलाबी कमु हूंदो। शहर तां हैवी ट्रैफ़िक जो दबाउ घटि थींदो। वीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारां डॉक्टर उसामा जे जवाब ते बेतमादी ज़ाहिर। 15 सेप्टेम्बर ते ज़ाती हैसियत में तलब कमीशन SHO अदील अफ़्ज़ाद हेडमर ज़िशान डॉक्टर सीमा ऐं प्रोफेसर नसीम खे 14 सेप्टेम्बर ते तलब करे वरितो। कमीशन जे ज़िशान चयो आहे त शहरनि बि केस बाबति ॼाण ॾियण शुरू करे छॾी आहे। हिकु शहरी पारां बाउंस अकाउंट जी ॼाण फराहम करण ते राज़ ज़ाहिर कयो। ॿिए शहरी डिजिटल फुट प्रिंट्स बाबति ॼाण ॾिनी। हिकु शहरी केस में मशकूक शख़्स जी बि निशानदेही कई। कमीशन ॼाण ॾींदड़ शहरनि जी सुञाणप ॻुझे रखण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कराचीअ जे एहसाब अदालत क्लिफ्टन में प्लाट जी गैर कानूनी अलाटमेंट वारे केस में वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾियो। मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया 15 सेप्टेम्बर ते तलब एहसाब अदालत। वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल SPCA जे अॻोणे DG इफ़्तिखार क़ाइमकानी, अॻोणे DCO फज़ल रहमान, KDA जे अॻोणे DO मुमताज़ हैदर, KDA जे एडिशनल DO सैद निशाद अली हैदरी, मोहम्मद रफ़ीक ऐं ॿिया तलब कयो वियो। नवां सूबा तमाशो ऐं रोशो आहे। ही सूबा ठाहिण न पर सूबा ख़त्म करण जी साज़िश आहे। कंहिं कुझु माण्हू कराचीअ खे सिंध खां धार करण चाहिनि था। SPB सरबराह डॉक्टर क़ादिर मुंशी चयो आहे त कराची जी मिल्कियत ऐं आलमी अहमियत ते कब्ज़े वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। 1 यूनिट ठाहे सूबा ख़त्म कया विया हुआ। हिन वक़्त बि नंढा नंढा यूनिट ठाहिण कब्ज़ो करण जी साज़िश आहे। सॼे सिंध हिकु आवाज़ आहे। क़ौमी बका लाइ पुरमन ऐं तारीख़ी जिदोजहद कई वेंदी।
9: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
10: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
11: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की अफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। دین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
12: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 5 PM. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Yuya Granular. मिट्टी जो माँ
6: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आटो पॉलिसी वसा छवी की मंजूरी दई छी ऐलान IMF की मंजूरी बात कर हुई दो आटो पार्ट्स की बरामदाद बढ़ाने लाए आलमी वैल्यू चेन से गढ़ण पंज वड़ा एंकर मैन्युफैक्चरिंग इदारा ठहण की तजवीज बरामदी आटो पार्ट्स से दरामदी ड्यूटी खत्म करने की भी सिफारिश थे। उर्दन में अमरीकी अड्डे से ईरानी हमलों के नतीजे में अमरीका के केतर ही फौजी जहाजन के नुकसान पहुंचो है अमरीकी मीडिया तस्दीक कर छी। CBC न्यूज पैंजे रिपोर्ट में जानायो है तो ईरानी मिसाइल हमलों में अमरीका जा F-15 जहाज A-10 थंडर बोल्ट मुतासर थे जडे तक कें भी अमरीकी फौजी के नुकसान न पहुंचो। पाकिस्तान ए सऊदी अरब जो दिफाई सहकार जारी है दिफाई वायदे से अमल दरामद लाए वक्त घुर्बल है। परदेही तर्जुमान सजाद हैदर खान है तो पाकिस्तान सऊदी अरब की खुदमुख्तारी ए सलामती लाए हिमायत जारी रख पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियत ए लॉजिस्टिक सहूलत लाए मौजूद है। पाकिस्तान सऊदी से मोसी हमलों की मुजम्मत कर चुको है। अफगान शागिर्दन से भी पाबंदी वाली खबरों दुरुस्त ना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया के परदेही वज़ीर हाकान फिदान से राबतो वितरफन लागापन समेत खत्े की सूरत हाल से गाल बोल परदेही खाते मौजिब इसहाक़ डार ए हाकान फिदान में विच ओवर की तब्दील थीदड़ सूरत हाल से खारज की दे वट कई वही सूरत हाल से सिफारतकारी वो सिलसिलो जारी रखने से तफाक।
7: जो भी इन नापाक इरादा सिंध के तकसीम करण जहां असा बिल्कुल खिलाफ आयो
8: सिंध जहा मू समझन था उनके वादानत वार है
7: सिंधी मामले दो सिंध से गड आयू कें भी पार्टी कदम भी न बीना
9: सिंध जो आवाम न अगे कभी सिंध को तकसीम करण दिनों न हाने दींदे
10: कुछ भी सिंधो सिंध वह दींदे
11: पर सोचू था सिंध की विरासत न पर अस सिरन की विरासत कंदी
12: सिर्फ और सिर्फ सिंध
13: धरती जो इंच इंच की हिफाजत कंदी उन सबूत है जो ख्वाब दिखा सिंध के टुड़न जहाँ ये ख्वाब जहाँ चपना जो कहते सिंध जहा मजदूर सिंध जहा हारी सिंध जहा उस्ताद सिंध जहा शायर अजीब वकील पंच हूं